0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
9: Economy, business, world, technology.
10: Noise filtered.
9: Numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
15: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
1: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
2: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
3: ओडिशा का है। जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
4: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
5: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
6: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
7: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
8: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Yeh le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
5: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
7: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
8: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
9: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
10: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
11: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा,
15: सबका राजा आर प्योर मसाला।
16: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
17: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
18: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
19: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Seth.
18: The show that sets the prime time agenda.
19: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
18: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
20: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
21: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
20: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoids up, aise mat kijiye. Suddenly people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
22: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
20: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
21: The line of control, Shiv Arun, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
4: सो मेनी अटैक्स,
3: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज। ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
4: I am Mr. France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
5: सो मेनी अटैक्स,
4: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, टू फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज।
5: इट्स इनक्रेडिबल।
4: ही हैज सीन हिस्ट्री ब्रेक लाइव अनफिल्टर्ड। 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right and Center.
4: Hard facts.
5: War-struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine. In France. In Italy.
7: At Srinagar.
8: I am Mr.
9: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: बताइए, आपको आपको कभी मारपीट का सामना करना पड़ा?
1: हाँ, मारपीट का बाद घर भांगा, दुकान भांगा दिया, धमकी दिया, ठीक है, धमकी दिया जी बीजेपी करके कर ले मार देगा, मर्डर कर देगा, हमारा दुकान भांग गया, हमारा घर भांग गया, सब कुछ
2: में हम लोग ये बीजेपी पार्टी के लिए लड़े थे, तो हमारा जो सासू का दुकान है ना, उसको जला दिया पूरा,
3: हमारा घर पूरा
2: जला दिया। हम लोग घर से नहीं था, घर से बाहर था, दो महीना घर में
0: भाग गया।
2: पैसा देके घर आए हैं।
0: किसको पैसा दिया?
2: घर का जो नेता है उनको पैसा देके हमको घर आना।
0: सो यू नो यू विल हियर मेनी सच स्टोरीज एंड फॉर एनीवन हु थिंक्स दैट दिस इज अ पेड क्राउड, sure there may be people who've been mobilized from across the state, but you will find countless such people who would have come here to Kolkata almost as a show of redemption. Every person you speak to here on the streets will have a story of how they were beaten, they were threatened. This young woman says her mother-in-law's shop was broken, it was burnt, and she had to stay away from her own house for 2 months. It's only after she paid some extortion money that she was allowed back. So I guess for them it is more an emotional moment. It is almost like a sort of release when they come here today and they see coming to fruition of something that they have struggled for all of this time. In fact, you know, when we speak of struggle, a lot of workers, karyakartas, leaders of the BJP have been jailed here, have had cases filed against them, multiple FIRs. Smriti Irani, former minister, former MP, and somebody who's been a part of the campaign, a very vocal part of the campaign here. I spoke to her earlier. Here's what she told us, and then I'll cut straight across to my colleagues, Shreyasi, Manogya, and the whole team on the ground. A hard-fought campaign, and finally, the day when the first BJP chief minister in West Bengal takes oath, somebody who was the voice of the BJP in Bengali here in West Bengal, Smriti Irani, how does it feel like?
4: There is a sense of not really great joy, but also a very somber moment of saying thank you to families and especially karyakartas that struggled through the years and kept the faith in the Sangathan. It is also, as Home Minister yesterday paid homage to all the workers who died, it is also a reminder that they died so that we could build a very prosperous state. We could build a state where there is justice for all and appeasement of none. So yes, today is a day of great celebration, but it's also a reminder of the responsibility towards citizens in the state of West Bengal.
0: Smriti Irani, main aapse puchna chahti hu, ek personal level par kya aapki yaad hai jo struggle BJP ne kiya hai? Kyunki Amit Shah ji ne bhi bola ki 321 karyakartaon ne apni jaan di hai, lekin पूरी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। आप भी इस स्टेट में बार बार आई हैं, संघर्षरत रही हैं।
4: मेरा एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ कांग्रेस पार्टी यूज़ करती है सिलेंडर के साथ, वो यहाँ धर्मतला का है 2013-14 का, जहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद मुझे भी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जेल हुए थे। तो आई थिंक दैट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सृजन या भारतीय जनता पार्टी का उत्थान कोई अकस्मात नहीं हुआ है। बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत लोगों ने बहुत प्रताड़नाएं सही हैं, लेकिन आपने सड़कों पर जो हुजूम जनता का देखा है, जो उल्लास जनता का देखा है, लिटरली ऐसा कि उनको कोई आज़ादी मिली है, वो अपने आप में संकेत है कि बंगाल में जो साधारण नागरिक है उसका कितना उत्पीड़न हो रहा था। आप खुद रिपोर्टर के नाते जब इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद कई परिचर्चाओं में शामिल हुई होंगी, लेकिन मैं जब अन्य शहरों में थी रिजल्ट के बाद, तब वहाँ लोग साधारण नागरिक आके बोल रहे थे कि वो नहीं जानते थे कि बंगाल की जनता को इतनी क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है, अथवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संघर्ष रहा है।
0: क्या एक लेवल पे आप डिसअपॉइंटेड भी हैं कि जो कुछ बंगाल में चल रहा था उसको वाइट वॉश किया गया? जैसे कि आपने कहा कि पता भी नहीं था ज़्यादातर लोगों को कि बंगाल में हो क्या रहा है। जब यहाँ बम फट रहे थे तो कुछ लोग उसका मीम बना रहे थे, जब लोगों को डराया जा रहा था तो उसको बैक पेजेस में ढके।
4: मुझे लगता है कि एक सबसेट है कुछ लोगों का, जिन लोगों की राजनीति और जर्नलिज्म इस बात पर आधारित थी कि वो कैसे वाइट वॉश करें, लेकिन सत्य परेशान होता है परास्त नहीं होता, और मुझे लगता है बंगाल का ये जो परिणाम है उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने भी जर्नलिस्ट के नाते इस बात का अनुभव

0: कांटाई से आया है।
1: शुभेंदु जी के घर से?
0: शुभेंदु जी घर से आए।
1: आप तृणमूल के टाइम से थे उनके साथ?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: सच बताओ।
0: हाँ।
1: तो पहले वो तृणमूल पर कांटाई से लड़ करके गए थे 20 साल पहले, अब देखो भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए।
0: हाँ, बहुत खुश है।
1: बहुत खुश है, क्या चाहते हो शुभेंदु अधिकारी से?
0: बहुत काम होगा, सब कुछ होगा, सुरक्षा रहेगा, सब कुछ मिलेगा।
1: क्विक बैक स्टोरी, शुभेंदु अधिकारी for the first time was elected to the Legislative Assembly of West Bengal on a Trinamool ticket in 2006, way back in 2006, exactly 20 years ago. His father, Shishir Adhikari, and he comes from a family of politicians. His brothers are into politics, two of his brothers. He himself is now the Chief Minister. His father, Shishir Adhikari, originally was in the Congress, then moved to the Trinamool Congress, and he was Mamata Banerjee's right-hand man in the Nandigram-Shingur agitation. And look where things have come now. Aap sab bhi kontai se aaye hain?
2: हम हुगली से, हुगली से आए।
1: अच्छा, हुगली में तो फिर एक ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था।
2: नहीं नहीं नहीं,
1: वो हुगली ने क्यों वोट किया?
2: पूरा सुपरा साफ हो गया, पूरा तृणमूल का पूरा सुपरा साफ हो गया।
3: ममता बनर्जी ने चोरी नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले 15 साल ममता बनर्जी चोरी करके बंगाल में आ चुका है था। अभी बंगाल की जनता जाग चुका है, जो चोरी वो चोरी अब नहीं कर पाया। इसलिए
1: आगे की बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार?
3: सरकार से हम हमारे जो बंगाल में सुरक्षा, नारियों का सुरक्षा, युवा का जो काम, जो या का जो सबसे बड़ा बेकार का प्रॉब्लम है, वो जो 1 करोड़ का जो नौकरी का दवा वो मिलेगा हमें। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ले आई। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि है।
1: अच्छा, ठीक है, क्या चाहते हो? जल्दी जल्दी बताइए, क्या
3: चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं,
4: निर्भया का
3: इंसाफ चाहते हैं। इन 10 वर्षों में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता का मृत्यु हुआ, उसका लिए इंसाफ चाहते हैं। शपथ ले और कारनामा चालू करे। जो हम लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं। 10 वर्षों में बहुत बीजेपी कार्यकर्ता का मृत्यु हुआ।
1: ओके, सो विल यू विल हियर अ लॉट ऑफ दिस। चलो जल्दी जल्दी जाओ, शुरू होने वाला शपथ ग्रहण, क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ। ऑलराइट, सो एवरीवन स्टॉप्स फॉर अ लिटिल बिट टू स्पीक देयर माइंड बिफोर दे आर मेकिंग देयर वे टू द ब्रिगेड ग्राउंड। द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ ऑन स्टेज एंड एनी मोमेंट नाउ द ओथ टेकिंग सेरेमनी इज गोइंग टू स्टार्ट। एनी मोर नेम्स महुआ दैट यू कैन थिंक ऑफ? बिकॉज अगेन वी आर on the one hand talking of, and we were speaking of Nandigram and Shingur. Interesting story, the entire, so if you've got the entire tribal belt being won by the BJP, the entire industrial belt of Durgapur, Asansol, BJP has made massive gains there. To the best of my recollection, barring about 5-6 seats, that entire area has been swept by the BJP. Shingur, which was the bedrock of Mamata Banerjee's rise, Becha Ram Manna was the MLA last time around. This time, he was defeated by the BJP. So it is as poetic as it gets that in that area also, you've got the BJP unseating the Trinamool. Keeping that in mind, who do you think could be the professional names that Shubhendu Adhikari will bring or needs to bring in his team?
5: Yeah, Padmaja, this is a very, just like Jayanto pointed out a little while ago, this is the most difficult question, simply because this is a completely, fresh new cabinet. And Shubhendu, apart from Shubhendu Adhikari, there aren't people really who have been part of any ministries anywhere. So they will have to really choose, and therefore, like you said, I mean, like we all mentioned, that they'll have to go, they will have to kind of choose from areas that BJP...
6: As Chief Minister of the State of West Bengal, signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor.

0: today is really going to be key. And then, of course, comes the most important thrust of all, the people who are going to do business. It's not just about the representation of region, caste, community, etc. It is also about people who are going to go out there, get business. We already spoke earlier about how the Niti Aayog has already been tasked with evolving a roadmap to ensure that West Bengal gets its work going on 4 or 5 important points. You know, the fish economy, what to do with its ports, mining, all of that is now going to be thought over, and a blueprint has been, or rather the task to evolve a blueprint has already been given to the Niti Aayog over the next few days. Mahua Chatterjee, what do you make of this mix that we see so far?
1: Interesting, and it's a good thing to see, you know, since, see, one thing the BJP doesn't have to choose from is experience, because they are a first-time government there. And these are people mostly, I mean, Nishit Pramanik has been a MP, of course, and so has Dilip Ghosh. And Agnimitra Paul has also been part of the BJP brigade in Bengal for a while. But they've never had a government there. Therefore, they didn't have to choose from much of experience. So since they had that advantage in a way, the first choices that they made were according to the regions and the communities. So they ensured that there are no wrong notes coming out, and therefore they have used people. I mean, there's one Santal from the Santal community, one from the Rajbonshi community, one from the Motua community. So I mean, they've been nicely taken care of, and that really proves one very important point, which is the the integration that the BJP government is looking at, the Shubhendu Adhikari government is looking at to begin with in their debut in Bengal. So that part is interesting, but again, like I said, none of them are experienced people. So as ministers, I mean, as faces, they definitely are part of the very vibrant part of the rainbow. But one will have to see in terms of performance. But it's possible that, you know, they are not yesterday's politicians. So they might just fit in very well, too. So that would make it even better. But as far as optics are concerned, they look very good.
0: The oath-taking ceremony has gotten over, and today you had only the CM and 5 ministers taking oath, which means that we are likely to see a cabinet expansion happening at a later date. I think more thought is going to be given to that process. Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Sudhiram Tudu, Nishit Pramanik, these are the only 5 leaders along with Shubhendu Adhikari who have taken oath today. Because we've got 294 seats and 10% is the total cabinet strength, you are likely to see about 29 maximum ministers. Today, only 5 have taken oath. I want to also tell you, by the way, a lot of action seems to have shifted to a place that was popularized by the Prime Minister. A lot of bhel puri happening over here. A lot of jhal mudi happening over here. You see this gentleman right here. भैया पूरी दुनिया में अब लोग झालमुड़ी की बात करते हैं आज तो आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है
2: हां अच्छा
0: सही बिजनेस चल रहा है
2: हां बहुत अच्छा
0: कहां से हो
2: आप बिहार से
0: बिहार में किधर
2: गया जिला
0: वोट किधर पड़ता है यहां या गया
2: क्या जी
0: वोट इधर पड़ता है गया में पड़ता है अच्छा ये मोदी जी के झालमुड़ी खाने के बाद कुछ असर पड़ा है आपकी जिंदगी में
2: जी बहुत पड़ा है मतलब ज्यादा बिक्री सेल है ये तो देखिए ना ये सामने देखिए पूरा भरा था ये पूरा खाली हो गया अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर में
0: लोग यहाँ झालमुड़ी खा के रील बनाने के लिए आते हैं इंस्टाग्राम
2: अधिकतर अधिकतर बहुत सारे
3: बंगाली लोग का
4: All right, that's the latest that we are picking up here on NDTV. A historic.
0: बोलने लग गए.
3: हिंदू, हम लोग हिंदू. Sorry, हम लोग हिंदू हैं. हिंदू बोलते हैं. हिंदू है.
5: हम लोग सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्म का जीत हुआ है, ये सनातन धर्म की जीत है।
0: सो एवरीथिंग इज इन द मिक्स ओवर हियर, फ्रॉम झालमुड़ी टू द विन ऑफ सनातन। इंटरेस्टिंग दैट आफ्टर दैट वन वीडियो बाय द प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली झालमुड़ी हैज बीन ब्रांडेड एज द फूड ऑफ वेस्ट बंगाल। लोग तो कहते थे माछ भात है यहाँ का खाना, आपने झालमुड़ी को बना दिया यहाँ का।
6: देखिए झालमुड़ी भी उतना ही पुराना है जितना माछ भात है, बंगाली बिना झालमुड़ी के रह नहीं सकता।
0: अच्छा।
6: मुड़ी हम लोग का मेन है, चावल मेन है, चावल या मुड़ी हो चाहे उष्ण भात हो,
0: माछ भात ज्यादा अच्छा, झालमुड़ी ज्यादा अच्छा,
7: दोनों अच्छा।
0: ये देखो ये आदमी खट से जो है मोदी जी का कटआउट भी लेके आ गया। आगे आ जाओ, चुप हो जाओ भाई, चुप। कहाँ से आए हो?
8: साउथ दिनाजपुर से आया हूँ, बालूघाट। मेरा सांसद है सुकांता मजुमदार, सुकांता मजुमदार से मैं ये कहना चाहता हूँ।
0: यहाँ पे क्यों आए?
8: मैं
9: शपथ ग्रहण हम लोगों ने देखने, इस बार बढ़ के लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार।
0: ये बताओ आप, चलो सब लोग यहाँ भाजपा के, चलिए महिलाओं से बात करते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू स्पीक टू द वुमेन। आंटी किधर से आई है? मंजू देवी नाम है।
10: हाँ, मंजू देवी।
0: कहाँ से आई है मंजू?
10: आए जा किसनो पाल रो पदू पोखर से, खेतीपुर।
0: सब लोग बोलने दीजिए ना, बीच में अंकल अंकल को बोलने दीजिए, अंकल आप आइए आगे, अंकल और महिलाओं को बोलने दीजिए।
11: बंगाल आजाद हुआ है मैडम, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आजादी मनाने आए। जय श्री राम।
0: कहाँ से आए?
11: कलकत्ता से ही हैं। टीएमसी की सरकार के अंदर में तकलीफ पा रहे थे, आज बीजेपी।
0: ये आंटी किधर से आई?
12: आज आजादी हुआ।
11: शुभेंदु बाबू को इतना ही कहना है कि टीएमसी नहीं करना है कभी, कांग्रेस नहीं कभी करना है, और सीपीएम नहीं करना है, भारत को बंगाल को आजाद बनाना है। जय श्री राम।
0: चलिए ये वेरी हेल्पफुल, बिकॉज एवरीवन ऑल द कार्यकर्ता हैव बीन गिवन अ नेम टैग। शपथ समारोह देख के
13: नहीं, अभी जा रहे हैं,
0: शपथ समारोह खत्म हो गया।
13: ठीक है, कोई बात नहीं है, भूमि पर पहुंचना हम लोग का जरूरत है। मोदी जी को रोज देख रहे हैं, जो दिल में रखा है वो दिल में ही मोदी जी है, हम लोग का बंगाल में मोदी जी है।
0: शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या सोच?
14: फॉर वुमेन, और जो बदलाव चाहिए फर्स्ट तो शिक्षा में बदलाव चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम डंप हो गई है। तो मैं तो चाहूँगी कि आने वाली सरकार सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था अच्छा करे, ताकि सभी शिक्षित हो, सभी अच्छा बुरा समझ सके।
0: आपको क्या चाहिए?
13: हम लोग को चाहिए कि हमारे जितने यूपी बिहार बंगाल का जितने हिंदू भाई है सब आज़ादी से जिंदा रहे। यहाँ पर हम लोग बहुत दब कर यहाँ पर थे, ममता बनर्जी का राज में हम लोग कहीं पर भी सुरक्षा नहीं थे, हम लोग अब सुरक्षा चाहिए।
0: सो यू विल हियर, यू नो व्हाट आई हैव टू से, दैट देयर इज अ गुड मिक्स दैट यू फाइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम ऑल क्लासेस, ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, अ हेल्दी मिक्स ऑफ मेन एंड वुमेन, अ लेडी हु इज अ टीचर देयर। एंड आई हैव टू से दिस, यू नो व्हाइल देयर वर अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज that got precedence in the last few months in the course of the election campaign, one thing that a lot of people spoke of again and again was the job scam, the fact that you had teachers recruitment which was cancelled. There were several people who found themselves completely at sea, because when the court intervened, those appointments were cancelled. Every household, every second household had such a story to share of somebody in their family who had suffered because of some multiple scams that came to light. And now there is a burden of expectation, without a doubt. The cutouts have also been brought out. बहुत ज़्यादा expectation है, कितना time लगाएंगे? एक साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा?
11: धीरे धीरे चाहिए, कोई चिंता नहीं, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, हम लोग 5 साल तक तैयार हैं।
0: Let me go across to Shreyasi, because I believe the sea of humanity is right there behind Shreyasi. I don't even know if you can hear me, Shreyasi, above the entire din. Over to you. What are you seeing? Padmaja, I have covered several political campaigns of various political parties, be it the CPIM, Trinamool Congress, the BJP, the Prime Minister's Brigade Rally. But the kind of, spectators today, it's unreal. The entire city's roads

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: I am Mr.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात
6: वाओ मामा क्या स्वाद है
5: अरे मेरे राजा

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: And the battle for the chief minister chair is over, but the big challenges lie ahead for Vijay. He promised a corruption-free government, one that prioritizes good governance. He appealed to the youth, the women, and anyone who wanted a change. The challenge is now to deliver on all these expectations.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes...
11: And the battle for the chief minister chair is over, but the big challenges lie ahead for Vijay. He promised a corruption-free government, one that prioritizes good governance. He appealed to the youth, the women, and anyone who wanted a change. The challenge is now to deliver on all these expectations.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
3: And the battle for the chief minister chair is over, but the big challenges lie ahead for Vijay. He promised a corruption-free government, one that prioritizes good governance. He appealed to the youth, the women, and anyone who wanted a change. The challenge is now to deliver on all these expectations.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ का रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.